याज्ञा करामः। सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्य तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमार अटोबिन वासस्थानयक वनलेस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मेनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहांसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन।